0: पर तन रूप कन्नी सुत कन फैलाए तबारी खाए नानक हंसा आदमी
1: सबो सुतक भरम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सुतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा।

अन्न देवता पानी देवता वैसंतर देवता लोण पंजवा पाया किरत आहुआ पापित पापी स्यों तन गड़ेया तुका पहिया तित जित मुख नाम ना उच्चरै बिन नामै रस खाए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली

0: रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:05 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਗਾਂਧੀ ਚਰਚਾ।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता

लगता है, जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ
1: ਇਯਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤਿ ਵਾਰਤਾਃ ਸ਼ੂਯਂਤਾਮ ਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 17,14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ं प्रति

0: स्थास्यति। यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सह सप्तशताधिकचतुस्सहस्ररूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मकपरियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पञ्जाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70+400+500 रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायिरिक्तं भारतकतरदेशयोः मध्ये सामरिकसहभागितां सुदृढां कर्तुम् अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थितभारतीयसमुदायं प्रति तस्य आत्मीयभावं, भारतकतरसम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं तस्य दृढप्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृटसत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता NDA इति संयुतिः अद्य सहयोगिदलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृटसत्राय NDA संयुतेः संसदीयकार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायिकार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्परसमन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्णप्रतिपक्षाय एकीकृतकार्ययोजनायाः विषये विचारविमर्शः भविष्यति। राष्ट्रियपरीक्षासंस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीयचिकित्सा, दन्तचिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्धपाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अङ्कपत्राणि तावत् आधिकारिकसङ्केतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीययात्रायै पश्चिमबङ्गालराज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमासुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मककार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाहः सिलिगुढीक्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमासुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां 3-एकदिवसीयशृङ्खलायाः द्वितीयस्पर्धायाम् इङ्ग्लैण्डदलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे भारतदलं 4 पराजितम्। जो रूट उत्तमप्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठक्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लण्डन् नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायकशृङ्खलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सत वज चुके ने, हुण तक दी मुख खबर सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच लगभग 25,000 करोड़ रुपए दे वख-वख प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे ते नींह पत्थर रखनगे। प्रधानमंत्री होरां दे जलंधर दौरे दे दौरान सुरक्षा दे मद्देनज़र अज जिला जलंधर विखे नो फ्लाइंग जोन ऐलानिया गया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भारत ने चुनौतियों के बावजूद इस साल अनाज की इतिहासिक 3,76,00,000 टन उपज पैदा की है। औरतों बारे राष्ट्रीय कमिशन के चेयरपर्सन विजया किशोर रहाटकर वालों बठिंडा विखे प्रशासनिक अधिकारियों के नाल मीटिंग, औरतों नाल संबंधित मामलों बारे दिते निर्देश। सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा है कि मानसून के मद्देनज़र सरकार ते प्रशासन पूरी तरह सुचेत है, हड़ रोकथाम के सारे जरूरी प्रबंध मुकम्मल हुए। महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली के 25 कैडेट पिछले 3 महीनों में रक्षा सिखलाई अकादमिया चुने गए। तरन तारण पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਸੁਣੂਗੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਬਰਾਂ।
3: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा।

0: है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक

0: मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने

0: विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। तीन मैचों की श्रृंखला अब एक एक की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज़ पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology, while countries like Germany and China is

जट एंड जूलियट इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी प्रियंका विशिष्ट ते दिलजीत दियां आवाज़ां च। आओ सुनदे हां प्रोग्राम का अगला गीत। सरपंच फिल्म चो लिया गया, आवाज़ां महेंद्र कपूर ते अनुराधा पौंडवाल दियां।

मिलो अगर दोबारा तो लौट जाने की बात मत करना, आता नहीं लम्हा ये बार बार, साथ होकर तन्हा रहने की बात मत करना। तुसी सुन रहे हो कुछ गजलां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। आओ सुनते हैं एक और गजल अलका याग्निक की आवाज़ विच।

है इश्क में सच्चा तू एतबार तो कर, आंखें बंद कर एक बार मेरा दीदार तो कर। हुआ नहीं तो अब तक हो जाएगा, तू बस थोड़ा सा इंतज़ार तो कर। और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गज़ल।

तेरी मुस्कान में खुदा का नूर लगता है, तेरी आंखों में मोहब्बत का सुरूर लगता है। जब भी देखूं तुझे दिल धड़कने लगता है, तू पास हो तो हर दर्द दूर लगता है। आओ सुनते हैं मेहंदी हसन की आवाज़ में प्यारी जी गज़ल।

जी दोस्तों, तुम बिन फिल्म दे इस गीत दे नाल असीं इस प्रोग्राम की शुरुआत की। आवाज़ा सन अनुराधा पौंडवाल ते सोनू निगम दियाँ। सो पहले कॉलर साडे नाल इस प्रोग्राम चा के जुड़ चुके ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो हैलो हैलो हैलो जी, लगता साढ़े ना उन्हों का राबता कायम नहीं हो पा रहा। कोई ना, असीं एक बार फिर तो कोशिश करते हैं, शायद उन्होंने साड़ी गलबात हो जाए। हैलो हेलो हेलो जी, लगता है साडा रबता नहीं हो पा रहा। कोई ना जी, हरविंदर सिंह रूप राय जी ने साडे कोल फरमाइश की थी, विश्वास फिल्म का गीत सुनना चाहते ने मुकेश की आवाज़ में। इन्हों की नाल साड़ी गलबात नहीं हो पाई, पर कोई ना, असं इन्हों की फरमाइश जरूर पूरी करा। सो इन्हों की फरमाइश तो आओ सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में एक गीत।

0: जी एक और कॉलर आके साथ जुड़ चुके ने, आओ गलबात करते हैं। हेलो, सत
1: जी,
0: श्री अकाल जी, कौन गलबात कर रहे हो?
1: मैं बंसी लाला जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अंबाला जी।
0: जी बड़ी दूरों फोन कर रहे हो, की हाल चाल है
1: दूर
0: तुहाडा?
1: नेड़े आई है, तो ये थोड़ी दूर है जी।
0: अंबाला साढ़े शहर तो थोड़ा जा दूर ही है ना। हाँ जी, की काम कर कर दे हो?
1: हाँ जी,
0: की काम
1: हाँ
0: कर
1: जी,
0: कर
1: हाँ
0: दे हो?
1: खेती बाड़ी करते हैं जी।
0: जी खेतीबाड़ी कर दे हो, तुसी अपने काम धंधे ते पहुंच चुके हो, तुहाडा टाइम बहुत खराब नहीं करांगे। सो दसो अपनी फरमाइश, सानू केड़ा गीत सुनना चाहुंदे हो?
1: लवारिस फिल्म का जी,
0: लवारिस
1: काहे
0: फिल्म का।
1: पैसे बेचना गरूर कर है, यही पैसा तो अपनों से दूर कर है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने ले, सुनो अपना मनपसंद गीत।

0: जी दोस्तों, इस गीत नूं तुसीं सुन रहे सी फराहत फतेह अली खान ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ां विच फिल्म सिंग इज किंग चुनिया गया। ते इक कॉलर आके इस दरमियान साडे नाल जुड़ चुके ने, आओ गलबात करदे हां। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गलबात कर रहे हो?
1: अपना जी श्री गंगानगर तो रेशम सिंह संधू जी।
0: जी रेशम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा भी बहुत
0: जी।
1: बहुत शुक्रिया जी।
0: तुहाडे इलाके च दसो मौसम किदां, की हाल चाल मौसम दा?
1: परसों मी पिया जी थोड़ा जा भी जानी ठीक है, मी जानी ठंड तो कुछ राहत मिली है जी।
0: ठंड तो कि गर्मी तो?
1: गर्मी तो जी गर्मी तो जी, ठंड होगी
0: लगदा। फोन मिल गया ते खुशी बड़ी चढ़ी हुई तानू?
1: बहुत बहुत खुशी जी, बहुत खुशी। बहुत गर्मी पै रही है जी।
0: जी, ते गीत केड़ा सुनाइए फिर अज
1: हुण
0: तानू?
1: मौसम ठीक होया जी।
0: जी, चंगी गल है, गर्मी तो राहत मिल रही है। ते गीत
1: हाँ
0: केड़ा
1: जी, हाँ
0: सुनोगे
1: जी,
0: अज
1: हाँ जी,
0: साडे
1: शुक्र
0: कोलों
1: है जी, हाँ
0: फरमाइश
1: जी,
0: करके?
1: शुक्र है जी, मालक सब ते ही खुशियां लियावे जी।
0: हाँ जी, गीत केड़ा सुनोगे?
1: गाना जी कल सामने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि नवाचार, हरित परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके

0: कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 11:05 हो रहे हैं। हूँ पेशे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंती।

जीवन सिंह बोगते इन्हों का पूरा ही परिवार। बेअंत सिंह बस स्टैंड जलाल दीवाल लुधियाना तो सानू फरमाइश भेजे ने। मलोट कैंप तो फरमाइश भेजी है सतीश मिगलानी, लखविंदर संधू ते विवान मिगलानी होना ने। करणवीर हाउस पुच्चो कैंचियां तो बठिंडा तो सानू फरमाइश भेजे ने प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन ते अभिजोत। प्रगट सिंह ढिल्लो, गुलजारी सिंह, नाजम सिंह, जगरूप, सुखदीप सिंह, जथेदार प्यारा सिंह, पिंड ढिल्लवा, जिला बरनाला, तहसील तपा मंडी तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। पीरबन्ना बनोई तो सुनाम तो सानू फरमाइश भेजी है जी दलजीत चीमा, मनदीप, राजदीप, बलराज रानी, डोली ते सिफत जोत सरा होना ने। दंतरेकी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा, करणवीर सिंह पॉल ते इन्हां दा पूरा ही पॉल परिवार सानू फरमाइश भेज रहे जी जलंधर तो। वैष्णो कलोनी तो सानू फरमाइश भेजी है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा तो हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। दादा बाबू रोड गिरहीट झारखंड तो सानू फरमाइश भेजिए मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत ते सादिया होना ने। पिंड तंगोरी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत ते सहजप्रीत कौर। बठिंडा रोड मंडी डबवली तो राजेंद्र नारक, अंजू, मोहित, लकी, तानिया ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। जनकपुरी सहारनपुर तो सानू फरमाइश भेजी है जी जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो होना ने। शाहजी नगर देगलूर महाराष्ट्र तो फरमाइश भेजी है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या ते सविता भाकरे होना ने। सेक्टर पंज सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी ते हिमांश। अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड बसौली नेड़े लालरू मंडी तो सानू फरमाइश भेज रहे ने जी संधु सिंह पट्टी, आरव, शकीला, कुलवंत, टिन्नू ते इन्हां दा पूरा ही परिवार। जिला रोपड़ पिंड पक्कू माजरा तो सानू फरमाइश भेजी है सुरेंद्र सिंह, कुलवंत, सुखजोत, भुपिंदर, मनजोत ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। आओ सुनते हैं सारियां दी मिली जुली फरमाइश ते प्रोग्राम दी आखिरी पेशकश बलविंदर सफरी दी आवाज़ विच एक गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशक

0: निदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जी बहुत खूबसूरत अल्फाज सीगे इस गीत दे। भी जे कोई गल दसे तजर्बे वाली ते गल ना पईए ते उन्हों गल नू सुन लईए ते समझ भी लईए, क्योंकि साड़ी जिंदगी चो बहुत सारी साढ़े काम आ सकती है। ते जदों असी खास दिनां दी भी गल करदे आ ना हरप्रीत, अज एक होर भी खास बहुत प्यारा जिहा दिन है,
1: बिल्कुल जी,
0: क्योंकि जदों असी हक दी गल करदे आ, न्याय दी गल करदे हाँ, ते ये दिन उभर के साढ़े सारयां दे दिमागां दे विच छा जांदा है। ये दिन है जी इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। जदों असी इंसाफ दी न्याय दी गल करदे हाँ ते ये दिन नूं असी हुमा के सारे जाने मनाने हाँ, ते दिन मनाउण दा तद ही फायदा हुंदा है जे साढ़े कोल जानकारी होएगी।

0: जी
1: देखो जी, क्राइम भी बहुत तरीके दे हुंदे ने अर्चना जी, और इंसाफ भी होना चाहिए। अजकल तो जिदा तुसी हुणे मेरे नाल गीत दे विच ही जिक्र कर रहे सीगे कि हरप्रीत आपा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइम दी गल ते कीती ही नहीं।
0: बिल्कुल, वो भी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अस आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 1:05 हो रहे ने। हुण पेशी प्रोग्राम दा वेरवा।

हूं तो कुछ समय बाद यानी 1:15 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम फौजी वीरा लई। दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे कलाकार होंगे बख्शी रसूलपुरी। साड़ी दूजी सभा शुरू होगी शाम 4 बजे। सभा दे शुरू च तुसी सुनोगे मुख खबरां। 4:02 बजे ते सुफियाना कलाम प्रोग्राम च अज दे कलाकार ने सतीश चंद्र। शाम 4:30 बजे तुसी सरवण करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम अज इस विच काम दियां गल्लां अज दे पा कल दे प्रोग्राम मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल कमाद दे कीड़े बारे डॉक्टर रजेंद्र कुमार जानकारी देंगे। सत 7:40 बजे सबरंग प्रोग्राम च अज अफसाना निगार होंगे सुरजीत सिंह मरजारा अफसाना जी प्यार का करिश्मा। इस तो फौरन बाद चंद गसलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे हिंदी च परिचर्चा सुनोगे रील कल्चर अभिव्यक्ति या आकर्षण। परिचर्चा च भाग लिया है विकास शर्मा पूनम कालिया ते डॉक्टर अनिल कुमार पांडे होना ने। रात 10 बजे पेश करांगे जी मुख खबरां। रात 10:02 बजे ते मिले जुले गीतां दा प्रोग्राम सुरछनकार पेश कीता जावेगा। ते रात 10:30 बजे पेश करांगे प्रोग्राम सरगम। रात 11:10 बजे ते प्रोग्राम सौगात पेश करेंगे जी DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो। सो ACG अज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्हां ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: असं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 1:10 हो रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

फौजी वीरों जय हिंद। आज दे प्रोग्राम लगे हाजिर है सोनिया सैनी। सो प्रोग्राम दा आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत नाल जिसनू आवाज दिती है किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च हुण तुसी सुन रहे सी फिल्म गोलमाल दा गीत किशोर कुमार दी आवाज च। प्रोग्राम च अगला गीत सुनवा जा रहे हैं लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज च, फिल्म जी जूली।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ, ਸੋ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
0: ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।

0: शायद किसी तकनीकी खराबी कारण संपर्क नहीं हो पा रहे। बाली जी, सानू दसो प्रधानमंत्री जी दे दौरे दे मद्देनज़र की कुछ उत्थे हो रहा है, की तैयारियां ने ते की माहौल है?
1: हाँ सरब जी, जो इस वेले इतने तैयारियां बहुत सारा तुम्हें दसना पता ही है कि मुकम्मल हो गई हुई ने।

पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। डीजीएमए ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है

0: इंतजामिया के डायरेक्टोरेट जनरल DGMA ने बहरी जहाजों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाजों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकाम जारी होने तक आबनाई हुरमुज से सफर कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खत्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाज़ों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खास तौर पर तनाज़े से मुतासर इलाके में मल्लाहों और कमर्शल जहाज़ों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों से तआवुन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज के खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और ये अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान कई अहम कवानीन को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदर जमहूरिया मोल्दोवा जाएंगी और अपनी हममनसब माया संधू के साथ मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसोर दान और रोमानिया के अबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुर, शाफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन काडिया के तौर पर हुई है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी के लोगों ने बुध को बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या GSP+ की आम की गई स्कीम के तहत तजारती फ़ायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकोहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम फौजी वीरां लई जारी है।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए।

0: यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई

0: गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मॉल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23

0: जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2:30 ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਦੇ ਗਾਏ ਲੋਕ ਗੀਤ।

रंगली धरती प्रोग्राम च तुसे सुन रहे हो बख्शी रसूलपुरी ते गाए लोक गीत। हुन सुनते हैं लोक गीत नैना दे आखे लगे।

अकाल पुरख प्रभु जो सृष्टि दे जर्रे जर्रे विच रम्या होया है, मनमोहना अते अति सुंदर प्रभु है, जिसका सर्वव्यापी नाम भी सुंदर है, जिसनू रूड़ो बयान किया गया है। भगत नामदेव जी तनासरी राग विच उचारे हुए शब्द विच अनेक दृष्टांत दे के प्रभु नाम नू अत प्यारा दर्शाते ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 693 ते सुभायमान शब्द विच आप जी फरमाते ने कि जिवें मानव जीवा नू जल प्यारा लगता है, ऊठ नू हरियां बेलां प्यारियां ने, जिवें धरती नू मीह ते पवरे नू फुल प्यारा है, जिवें कोयल नू अंब, चकवी नू सूरज ते हंस नू मान सरोवर प्यारा है, बारक खीर ते मछली नीर प्यारे हन, इसे तरह तिन्ना पवना विच हे प्रभु आप जी दा नाम प्यारा है। तेरा नाम रूड़ो, रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रामैया। इस शब्द का गायन कीता है भाई सुखपाल सिंह होरां।

0: तेरा नाम रूड़ो, रूप रूड़ो, अति रंग रूड़ो, मेरो रामैया। इस शब्द का गायन किया सिपाही सुखपाल सिंह होरा ने। इस सृष्टि विच नाम विहूणे लोग रोगां नाल ग्रस्त हन। इन्हां रोगां दा निवारण नाम नाल ही संभव है, क्योंकि विकारां दी मैल नाल ए मन दूषित हो जांदा है। श्री गुरु नानक देव जी ए तथ बयान करदे ने, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। सुनदे हां डॉक्टर इंदरजीत सिंह वासू होरां पासों ए वार्ता।
1: गुरबाणी दा ए फरमान गुरु नानक देव जी दी रचना है, जो तनासरी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब विच अंग नंबर 687 ते दर्ज है। इस फरमान अनुसार मनुखी संसार सच तो वांझा हो के अपवित्र हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो कई रोगों संकटों ते बीमारियों नाल ग्रसिया जाता है। प्रभु दा नाम सारे रोगों दा दारू है। नाम सिमरन ते साधना नाल संसार फिर पहली रोग रहित दशा विच आ सकता है। गुरु नानक देव जी ने जदों संसार दी आद प्रकृति बारे एक पूरे अध्यात्मक वैद वांग मंथन किया, तो उन्हें यह अनुभव किया कि सिरजनहार ने यह संसार अपने निवास लई एक कोठड़ी के रूप में साजिया है। सारी धरती नूं धर्म नियम अनुसार चलन वाली धर्मशाल के रूप में स्थापित किया है। कुदरत नूं भी उसे ने साजिया है, तो फिर आप इस विच वस गया है। इस संबंधी गुरबाणी च उन्होंने फरमान हैं, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, तिसमें धरती थाप रखी धर्मसार, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। गुरु नानक देव जी ने अनुभव किया कि इस संसार विच दो किस्म के लोग वसते हैं। एक वर्ग अपने मूल प्रकृति सच नाल जुड़ के जीवन जीवन वाला है, जिस असंखा जपी तपी जोगी भगत आदि हैं, जिन्हों का विस्तार उन्होंने जपजी की पौड़ी में 17 नंबर च किया है। दूसरे वर्ग में वो लोग हैं जिन्होंने अपने मूल सच की प्रकृति तो पासा वट के अपने जीवन में मैला तो अपवित्र कर लिया है। उन्हां दे बारे गुरबाणी च कहा गया है, कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। इन्हां राक्षी प्रवृत्तियां वाले लोगों का समुचा विसार जपची की 18वीं पौड़ी च किया गया है, जिवें असंख मूर्खंद कोर असंख।

तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तनासरी राग विच उचारित इस शब्द का इस राग विच ही गायन कीता सी कुमार गौरव कोली होरा ने।

हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। साडी स्टूडियो की कड़ी ते 6 बज रहे ने। हुण तुसीं सुणोगे समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं

0: पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम जी वेव एप्स राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 6:05 हो रहे ने। हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है।
1: इस मौके बोलदिया केंद्रीय रेलवे ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूबे दे विकास लई केंद्र सरकार दी वचनबद्धता दोहराई।
2: पंजाब में अपार संभावना है साथियों, लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुँचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से जींद सोनीपत दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगड्डी को रवाना किया। पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगड्डी की शुरुआत रेलवे खेतर च साफ अते चुगिरदे पक्षी आवाजाई को अपनाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ तो वे राष्ट्रीय शाहरा प्रोजैक्टा का नींह पत्थर रख्या तो राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैसवे समर्पित किया। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारतीय रेल में वड्डा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नाल ही दे सालों च विकास का एक नवा गेड देखा गया है, तरक्की के राह पर अगे वध्या। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन रेलगड्डी की शुरुआत ने जींद नूं भारत के इतिहास च एक विशेष थां दित्ती है।
0: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सेहत संभाल सिक्ख्या ते सड़क बुनियादी ढांचे दे नाल संबंधित लगभग 4,700 करोड़ के वक्-वक् विकास प्रोजैक्टा का नींह पत्थर रख्या ते कुछ नूं राष्ट्र नूं समर्पित किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ विखे आयोजित एक समागम च प्रधानमंत्री मोदी ने 505 करोड़ की लागत नाल बनिया एक एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर अते 440 करोड़ की लागत नाल बनिया एक एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर राष्ट्र नूं समर्पित किया। उन्होंने PGI MER चंडीगढ़ विखे PM भीम योजना अधीन 269 बिस्तरियां वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का नींह पत्थर भी रख्या। प्रधानमंत्री ने जीरकपुर कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित किया अते जीरकपुर बाईपास ते चंडीगढ़ एयरपोर्ट एरोसिटी ग्रीनफील्ड हाईवे का नींह पत्थर भी रख्या। उन्होंने सैक्टर 46 के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अते सरकारी कॉलेज विखे होस्टल ब्लॉकों के नाल नाल पंजाब यूनिवर्सिटी विखे एक नवे बहुमंतवी ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। इस मौके एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा,
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @ETIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-EIR जलंधर, यूट्यूब ते साडा चैनल है @ETIR जलंधर। पंजाब भर में वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR का घर घर गणना गेट मौजूदा समय चल रहा है तो 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया को होर सुचारू बनाने सूबे भर के सारे पोलिंग बूथों उत्ते 19 जुलाई को सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक एक रोज़ा विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिस नाल वोटरां नूं अपने गणना फार्म भरन ते जमा करवाउण दी सहूलत दित्ती जाएगी। पंजाब दे मुख चोण अफसर अनंतता मित्रा ने सूबे दे वोटरां नूं सरगर्मी नाल हिस्सा लैण दी अपील करदिआं कहा है कि जेकर किसी व्यक्ति ने अजे तक अपना गणना फार्म नहीं भरिया तो तुरंत अपने बूथ लैवल अफसर नाल संपर्क करन जां इस विशेष कैंप दौरान अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ ते जाण। हरेक योग वोटर दा नाम 13 अगस्त नूं प्रकाशित होण वाली मुढ़ली वोटर सूची च शामिल होना यकीनी बनाउण लई नागरिकां दी सरगर्म भागीदारी बहुत जरूरी है। पंजाब राज बाल अधिकार सुरक्षा कमिशन ते डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर दे निर्देशां मुताबक जिले विच सुरक्षित स्कूल वाहन नीति तहत विशेष जांच मुहिम चलाई गई।

0: बाबत असी दूसरी एक दवाई सिफारिश कीती है, उहदा नाम है ब्रोमा डायलोन। जिस तरह चिट्टा नमक दा पाउडर हुंदा उस तरह दा असी इह दवाई सिफारिश कीती है। इहदा जिस जिहड़ा मिश्रण बनाउणा उह 25 ग्राम तुसीं ब्रोमा डायलोन दवाई लैणी है, 20 ml तेल लैणा, 20 ग्राम पीसी खंड लैणी, 1 किलो दलिया लैणा, उहनूं चंगी तरह आपां मिक्स कर लैणा ते इह बना के आपां पुड़ियां रख देणियां खेत विच। ते जे जदों इह रख दिंदे आ, इहदा फायदा इह है कि जदों इक बार चूहा खा लैंदा आ तीजे तो चौथे दिन जाके मरता है। इन बिटवीन की होंगे कि सारे जिहड़ा चोगा आ वो सारे चूहे खा जाते हैं, तो बहुत वधिया कंट्रोल होंगे।
1: दो बोल।

0: हाँ जी शिंगारा सिंह जी बचियाले, कल का प्रोग्राम इस तरह सवेरे 6:30 ते खेतीबाड़ी प्रोग्राम च नवे बाग लाने संबंधी कुछ जानकारियां सांझियां करांगे। शामां नूं 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच छोटे जानवरां दी सांभ संभाल नूं लै के डॉक्टर परमिंदर कौर लुबाणा जानकारियां सांझियां करनगे। नाटक सराला इहदा तीजा भाग सजणा नाल सांझा कर।
1: मौसम की कहिंदा जी?
0: जिथों तक गल है शिंगारा सिंह जी मौसम दी
1: जी,
0: है छटां पैण दा अनुमान।
1: अच्छा
0: हाँ, मौसम दा प्रभाव यही है। ते आपां चलीए जी जय

से कभी भी दूरी नहीं बनाई। बच्चे और हमारा ये अजीज घी खिचड़ी की तरह घुल मिल गए थे। कई बार तो खाने पीने के बाद ये उनके हाथों में लिपना चाहता था और बच्चे भी इसको ऐसे हाथों में उठा उठा कर लोसते थे और मोहब्बत का एहसास महसूस करते थे। पहले से लेकर अब तक इस तरह से घर में रह रहा है, मालिक ने ऐसा बताया था। रात के वक्त ये कहाँ रहता है, मेहमान ने अगला सवाल पूछ लिया था। हमारा घर इसका घर है, ये बच्चों और घर को छोड़कर बाहर कहीं भी नहीं जाता। जब इसके दूसरे साथियों के आने का वक्त होता है तो ये ज़रूर चुवारे की मंडेर पर जाकर उनको मिलकर खुद ब खुद वापस आ जाता है और फिर सारा दिन घर में इधर उधर चलता फिरता रहता है। मालिक कह रहा था, रात के वक्त इसका ठिकाना कहाँ होता है। दूसरे मेहमान ने अगला सवाल पूछ लिया था। वो देखो सामने कूलर है, कूलर स्टैंड के ऊपर है। रात को इस कूलर के ऊपर बिठाकर ऊपर से एक टोकरी से ढांप देते हैं ताकि कोई कुत्ता बिल्ली इसके आराम में रुकावट ना बने। टोकरी के ऊपर दो तीन ईंटें भी रख देते हैं। सवेरे होते ही ये पहले की तरह अपना रहन सहन शुरू कर देता है और ढोलकी गाता है। ये बेफिक्री, सुकून और शांत स्वभाव से जिंदगी का हर पल गुजारता है। बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, अब तो हमारे कुनबे का पक्का मेंबर है। मालिक कह रहा था, अरे अब तू यहीं बैठेगा, बड़ा चौधरी बनकर बैठा है, लगता है तुझे बातें सुनने का भूख हट गया है, अंदर तुझे मम्मी उड़ीक रही है। लड़की ने अंदर से आते ही हरिये को कहना शुरू कर दिया था। घर में कबूतर को हरिये के नाम से पुकारा जाता है, तमाम इसको इसी नाम से पुकारते हैं। लड़की की बात सुनकर हरिया अंदर की तरफ उड़कर चला गया था। आए हुए मेहमान लड़की की इस डांट को देखकर वो हरिये में और भी दिलचस्पी लेने लगे थे। बेटे तुम्हारे अंकल आए हैं, पहले इनसे मिल, लड़की के वालिद ने उससे मुखातिब होते कहा था। सत श्री अकाल अंकल जी, लड़की ने हाथ जोड़कर दोनों मेहमानों को सत्कार भेंट किया और वो शर्मा भी रही थी। बेटे किस बात में करते हो, एक मेहमान ने पूछ लिया था। अंकल जी छठी जमात में पढ़ती हूँ, लड़की का जवाब था। कौन से स्कूल में, दूसरे मेहमान ने भी पूछ लिया था। यहाँ के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में, नज़दीक ही है हमारा स्कूल, कई बार तो हरिया ही स्कूल छोड़ आता है, इसके होते कोई डर हमारे नज़दीक नहीं आता। अगर फारी छुट्टी के वक्त लेट हो जाऊँ तो ये मुझे देखने भी जाता है। ये देख देख कर घर वापस आकर इशारों से सब कुछ समझा देता है, लड़की ने ऐसा भी बताया था। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कबूतर भी खतों का लेन देन भी करते थे। कई मुल्कों में तो आज भी खतों और डाक टिकटों के ऊपर कबूतरों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये तो मोहब्बत के करने वालों के दरमियान पुल का काम फरंजाम देते रहे हैं। एक गीत भी तो अक्सर सुनने को मिलता है, चिट्ठी मेरे ढोल की पहुँचाई बे कबूतरा। मेहमानों में से एक ने कबूतर का इतिहास ही जैसे बयान कर दिया हो। डैडी फ्रूट चाट तैयार है, कब लाऊं, मम्मी ने पूछा है, लड़की ने अगली बात कह दी थी। बेटे क्या हरिया भी फ्रूट चाट खा लेता है, एक मेहमान ने पूछा। जो कुछ हम खाते हैं वो हर चीज़ खा लेता है, बाजरा इसकी चाहत है, दूध और पानी भी शौक से पीता है, चाय की तड़प तो देखता भी नहीं, लड़की ने बताया। फिर तो बेटे इतनी शिफ्टों के मालिक को हम अपने घर आज ही ले जाएंगे, ये हमारा घर भी खूब सजाएगा, एक मेहमान ने अपने मन की कैफियत कह डाली थी। नहीं अंकल बिल्कुल नहीं, ये हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा, लड़की ने मेहमान को अपने दो टूक फैसला सुना दिया था। तू नीतू शायद इनको पहचाना नहीं, वालिद ने लड़की को कहा। वालिद की बात सुनकर लड़की शशोपन में पड़ गई थी। वो वालिद की बात सुनकर वालिद

तरफ और अभी मेहमान की तरफ बड़ी हैरत से देखने लगी थी। अगले ही पल वाल्द ने इस बुझारत को बताकर नीतू को मानसिक तनाव से रुख रुख कर दिया था और कहा था, ये तेरे कुहाड़े वाले फूफा जी हैं जो बड़ी देर के बाद चूंडी के घर भगवान बन कर रहे हैं। फूफा ने लड़की को अपनी गोद में लेकर कहा, बेटे तेरा बब्बू भाई तुझसे भी छोटा था, जब वो आपके घर में मिट्टी का कना हुआ कबूतर चोरी उठाकर ले गया था। अब तो तुम्हारे पास असल कबूतर है। बात कहते कहते फूफा जी खुश हो गए थे।

0: गोद में लेकर कहा, बेटे तेरा बब्बू भाई तुझसे भी छोटा था, जब वो आपके घर में मिट्टी का कना हुआ कबूतर चोरी उठाकर ले गया था। अब तो तुम्हारे पास असल कबूतर है। बात कहते कहते फूफा जी खुश हो गए थे। फूफा जी, मुझे मालूम ना था कि बब्बू भाई कबूतरों को इतना प्यार करता है। बब्बू भाई के लिए तो घर से जो भी चाहो ले जा सकते हो, ये बब्बू भाई का ही घर है, नीतू कह रही थी। नहीं बेटे, ये आपका प्यारा है, ये तुम्हारे घर में ही रहेगा। हमें किसी का प्यार छीनने का हक नहीं, लेकिन मैं बब्बू को बताऊंगा कि तुम और तुम्हारे घर वाले हरियों को कैसे प्यार करते हैं। तुमने तो इसे घर का मेंबर ही बना लिया है। फूफा की बात सुनकर नीतू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो तनाव से आजाद थी।
1: हुण तुसी सुन रहे सी अफसाना निगार सुरजीत सिंह मरजारा हुणा वलों। लाओ हुण समात फरमाउने आ चंद गज़लां।

0: आर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें।
1: मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपने संबोधन च सब तो पहला चंडीगढ़ की साफ सफाई ते उहदी खूबसूरती की तारीफ करदिआं कहा,
2: चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में, और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद, और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। आपको ध्यान होगा, 1.5 साल पहले देश ने न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया। हम दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। भारतीय न्याय संहिता यानी दंड आधारित कानूनों की जगह न्याय आधारित कानूनी व्यवस्था, और तब भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे।
1: मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश विच स्वच्छता दे इनकलाब दा जिक्र कीता।
2: साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके।
1: सेहत के खेत्र विच चंडीगढ़ के प्रशासन ने किस तरह दियां मल्लां मारियां ने, इसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने खास तौर पर जिक्र किया।
2: हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के

0: ये भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे, हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं।
1: मान्योग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने कहा कि उन्हां दी सरकार देश नूं टीबी मुक्त बनाउण दे लई वचनबद्ध है। इस खेतर विच कीतियां गईयां प्राप्तियां ते उद्यमां दा भी उन्हां जिक्र कीता।
0: साथियों, हमने देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जन भागीदारी के जरिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। समय से टीबी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है आज देश में टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज 90% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों के भीतर भीतर टीबी संक्रमण भी 21% कम हुआ है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब को हो रहा है। इसका लाभ हमारे मिडिल क्लास को हो रहा है और ज्यादा लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है। और अब तो चंडीगढ़ PGI में भी MBBS कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इससे देश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। देश को बड़ी संख्या में बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। साथियों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहां के शिक्षक और यहां के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है।

0: इसलिए पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ है। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा, मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। साथियों, रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाते हुए आज जालंधर में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा।
1: आज भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला संसार का 5वां मुल्क बनिया। इस माण मत्ते पल नू माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने देशवासियों दे नाल इंज सांझा कीता।
0: साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं इसके लिए भी आप सभी को और देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाए। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इन नई परियोजनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जलंधर दी रंगली धरती ने आज एक नवा इतिहास सिरजिया जदों देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाबियां दे अथाह प्यार ते अपनात दे निग विच जलंधर पहुंचे। सिर ते किसानी सत्कार दी प्रतीक हरी पग सजाई। माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दा यह दौरा सिर्फ सियासी नहीं सगो पंजाब दे विकास ते भावनावां नूं गलवकड़ी पाउण वाला एक यादगारी पल बन गया। इस भावुक ते उत्साह नाल भरे माहौल विच उन्हां ने सूबे दी तकदीर बदलन लई 5,470 करोड़ रुपए दे विकास प्रोजेक्टां दी सौगात दित्ती। अमृत भारत स्टेशन योजना तहत 125 करोड़ रुपए की लागत नाल नवियाए गए हाईटेक जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करदिआं उन्होंने पंजाब दीआं उम्मीदां नूं नवीं रफ्तार दित्ती। इस दे नाल ही अमृतसर तों वाराणसी विचकार चलण वाली नवीं श्री गुरु रविदास एक्सप्रैस नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। ट्रेन दे अंदर डेरा सचखंड बल्लां दे मुखी संत निरंजन दास जी नाल प्रधानमंत्री होरां दी मुलाकात ने इस समागम नूं होर वी अध्यात्मक ते भावुक बना दिता। इस इतिहासिक पल दे गवाह बनन लई पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, रेलवे राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ते कई प्रमुख शख्सियतां मंच ते मौजूद सन। जलंधर दी धरती तों गूंजी माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दी आवाज ने हर पंजाबी दे दिल नूं छोया। इस मौके ते केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होरां ने अपने संबोधन विच कहा,
2: पंजाब की इस वीर भूमि को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मान्य सांसदगण, विधायकगण और मंच पर और मंच के साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 राज्यों के 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया।

0: है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। अब तक 261 स्टेशन बनकर तैयार हो गए और इस वर्ष के अंत तक 350 स्टेशनों का नवनिर्माण संपूर्ण किया जाएगा। साथियों, स्टेशन निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा गया है। आने वाले दशकों में जब ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, तब रेलवे की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था आज से की गई है। इस बात का आज से ध्यान किया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो स्टेशन में सेकंड एंट्री भी रखी गई है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक आंगन बनाया गया है, कॉन्कोर्स। रेलवे को मॉडर्नाइज करने में इन स्टेशन की बड़ी भूमिका रहेगी और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का आधुनिकीकरण हाथ में लिया है, उससे रेलवे का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डबल किया, तीन गुना किया, चार गुना किया और अब 25 गुना बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए स्टेशन बजट किया है पंजाब का। आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब में 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, चार अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, रेलवे के नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लुधियाना से लेके मुंबई में JNPT तक कंप्लीट, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को जोड़ता है और इस तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपने संबोधन का आगाज इस तरह कीता।
2: भारत माता की, आज पंजाब दी इस गुरुआ पिरादा दी धरती ते वाड़े सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों कीवे हो, जल्दी कलज हो। साथियों, कुछ समय पहले मैं यहाँ श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा। आज सुबह मुझे जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जींद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हम गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने रेल ते सड़क विकास प्रोजेक्टां दा वेरवा दिंदिया होया क्या,
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है।
1: आजादी के संघर्ष ते गुरुद्वारा सुधार लहर विच वडमुला योगदान पाउन वाले सरदार तेजा सिंह समुद्री नूं याद करदिआं माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने कहा,
2: साथियों आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजा सिंह समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में

0: हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं।
1: भारत दे मजबूत रेल नेटवर्क की शलाका करते हैं मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुराने किया।
0: साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है, ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था, इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहाँ जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहाँ इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है, हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दी जलंधर फेरी पंजाब नाल एक डूंगे ते भावुक रिश्ते दी प्रतीक रही। उन्होंने पंजाब दी तरक्की लई 5,470 करोड़ रुपए दे विकास प्रोजेक्टां दी वड्डी सौगात पंजाब नूं दित्ती, जिस विच जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन दा नवीनीकरण शामिल सी। जलंधर दे लोकां वल्लों कीते गए स्वच्छता से स्वागत दी शलाघा करदिआं उन्हां इस फेरी नूं सियासत तों उपर उठ के पंजाब दी खुशहाली ते गुरुआं दे आशीर्वाद नूं समर्पित कीता। ए दौरा पंजाब दे सुनहरी भविख लई उम्मीद दी एक नवी किरण छड गया।
2: हुण तुसीं सुन रहे सी मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दी चंडीगढ़ अते जलंधर फेरी ते आधारित रेडियो रिपोर्ट, जिस दे वाचक सन बिरिंदर सिंह ते प्रस्तुति ऑल इंडिया रेडियो जलंधर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 8:30 हो रहे ने ते हुण वेला हो गया प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। लो जी, सत श्री अकाल दोस्तों। सब तो पहलां तां आकाशवाणी दे इस खूबसूरत प्रोग्राम दे विच जिंदगी हसीन है जिसका नाम है, थोड़ा सारयां दा तहे दिलों स्वागत करदा है थोड़ा दोस्त गगन वर्मा। उम्मीद करदा कि तुसी सारे तंदुरुस्त, खुश अते अपने परिवारां नाल सुख शांति नाल रह रहे होवोगे। दोस्तों, जिंदगी नूं हसीन बनाउण वास्ते साडी सोच बहुत ज़्यादा जरूरी है कि असी किद्दां सोचदे हां, किसी चीज़ नूं किद्दां नहीं सोचते। हर वार दी तरह इस वार भी मेरा जिहड़ा विशा है, साडा जिहड़ा विशा असी गल्लां बातां करांगे एक नवें विशे ते, जिहड़ा कि है सानू रब वल्लों, कुदरत वल्लों मिली हुई बहुत सोहनी चीज़ जिहड़ी खुद आप कुदरत है। दोस्तों, जिंदगी नूं सोहना बनाउण वालियां बहुत सारियां इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां ने, पर उहनां विच्चों सब तो वड्डा तोहफा है साडे लई कुदरत। सवेर दी पहली किरण, पंछियां दा चहचहाउणा, ठंडी हवा दा चौंका, दरख्तां दी छां, मीह दीआं बूंदां ते मिट्टी दी खुशबू, इह सारियां चीज़ां साडे लई इक कुदरत, एक तोहफे दे रूप वजों साडे लई फायदेमंद ने। तो सानू साडा जिहड़ा पहला जिहड़ा कर्तव्य होना चाहीदा कि इहनां दे नाल टाइम स्पेंड करन दा। सो जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच असीं बहुत सारियां गल्लां बातां करनियां है, और उस तो पहला मैं जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दा पहला गीत थोड़े तक लैके आ रहा। लो जी, आनंद माणो जी इस गीत दा।

जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दी गल अगर करिए तो जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच असी गल्लां भी बहुत सारियां करते हैं, पर अज दा जिहड़ा विषय है साडा कुदरत उत्ते है। पहली बार पहली गल दे विच असी ये समझिया कि कुदरत नूं टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी गल, अपने आप नूं ये सवाल पूछना कि असी की कर की सकते हैं कुदरत लई। वड्डी गल करन दी लोड़ नहीं, छोटियां छोटियां आदतां ही वड्डा बदलाव लियांदियां हन। हर साल घट्टो घट एक रुख लगाओ, क्योंकि जे रुख लगावांगे तो उहदी पॉजिटिविटी सकारात्मकता जिहड़ी तुहाडे विच आउणी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिहड़े पौधे ने हमेशा दिंदे ही ने, लैंदे कदी कुछ नहीं, निरस्वार्थ। जे असी एग्जाम्पल लैनी होवे, सीखना होवे, तो असी पौद्यां तों लै सकते हैं। पानी नूं कदी बेकार ना करो, प्लास्टिक दी वरतों नूं जिन्ना हो सके कटाओ, अपने घर दे नेड़े पंछियां लई पानी रखो, बच्चियां नूं कुदरत नाल जोड़ो, सवेरे कुछ समा पार्क च या खुले माहौल विच बिताओ। ये सारियां चीज़ां साडी जिंदगी नूं, साडे शरीर नूं, साडे दिमाग नूं शांत करनगियां, तां ही तां जिंदगी हसीन होएगी। जिंदगी हसीन है करन तों पहलां प्रोग्राम दे विच असीं जिंदगी हसीन है बारे गल्लां करदे हां, और अगर असीं जिंदगी हसीन है करनी है साडे अंदरों ये जर्नी शुरू होनी है, उहदे लई साडे शरीर नूं दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जे साडा शरीर पंज तत्तां नाल बणिया होया, क्यों ना असीं उन्हां पंजां तत्तां दे विच्चों थोड़ा थोड़ा टाइम सारिआं नूं देणा शुरू करिए। सूरज दी लोह, घाह, मिट्टी, इह सारीआं चीज़ां दे विच, पाणी, इहनां नूं टाइम देणा बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिंदगी दा दिहाड़ी दे कुछ पल इहदे विच जरूर बिताओ। जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच हुण वेला हो गया अगले गीत दा। लो जी, पेश है अगला गीत, आनंद माणो जी।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343 ਸ਼ਹਿਰ 6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारम्भ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई।

0: की है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में

0: हो चुका है, 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रिफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे

0: स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 पैसे पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भवा की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 MHz, FM बैंड 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 9:30 हो गए ने। हुण वेला है हिंदी वार्ता प्रोग्राम परी चर्चा दा, जिस विच चर्चा दा विषय रहेगा रील कल्चर अभिव्यक्ति या आकर्षण। तो इस विच प्रतिभागी होणगे विकास शर्मा, पूनम कालिया अते डॉक्टर अनिल कुमार पांडे।
1: रील्स ने अभिव्यक्ति को एक नया मंच दिया है। गांव का कलाकार हो या घर की रसोई में रेसिपीज बनाने वाली गृहिणी हो या कोई युवा उद्यमी, हर किसी के पास अपनी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या रील्स रचनात्मकता का नया माध्यम है या क्षणिक लोकप्रियता की दौड़? क्या हम रील्स का उपयोग कर रहे हैं या कहीं रील्स ही हमारे समय और व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश में है? इन्हीं सवालों पर आज हम एक सार्थक चर्चा करेंगे कि रील्स कल्चर अभिव्यक्ति या आकर्षण। आज की हमारी परिचर्चा का ये विषय है और हमने अपने अतिथियों का स्वागत हम करते हैं। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विकास शर्मा जी को, जो कि दैनिक हिंदी समाचार पत्र में संपादक हैं, अनिल कुमार पांडे जी को जो कि युवा कवि हैं, आलोचक हैं, संपादक हैं, और पूनम कालिया जी को जो कि कई वर्षों से थिएटर से जुड़ी हुई हैं और अध्यापिका भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत जी आपका।
2: शुक्रिया,
3: धन्यवाद।
1: सो आज हम रील्स कल्चर की बात करने जा रहे हैं। रील्स ने हम सभी को एक मंच दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड ना होकर हमारी जीवन शैली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन के रह गई है। इतना ज्यादा कैसे अपना लिया हमने रील्स कल्चर को? विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी शुक्रिया, सबसे पहले तो यहाँ बुलाया आप लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद। रील्स का जहाँ तक संबंध है तो मैं कहना चाहूंगा कि अब जानते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसका कोई गवर्नमेंट सर्वे, ऑथेंटिक सर्वे तो नहीं, लेकिन एक अलग अलग सर्वे के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस समय इंडिया में कम से कम 50 करोड़ लोग हर रोज
1: जी
2: रोज कम से कम 1 घंटा, कई लोग तो 3 घंटे भी रील्स पर बिताते हैं
1: जी।
2: तो जैसा आप जानती हैं कि हर चीज़ के कुछ सुखद दुखद पहलू होते हैं, तो ऐसा ही मामला रील्स का भी है
1: जी। मतलब कि हमें इसे देखकर एक क्षणिक खुशी होती है कि मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया माध्यम हमें ये लगता है।
4: बिल्कुल, मनोरंजन की दृष्टि से कुछ समय के लिए टाइम पास तो कर ही देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नई प्रतिभाएं हैं जिनको बड़ा मंच नहीं मिला, मान लीजिए जो विश्वविद्यालय में जाना चाहे, महाविद्यालय में जाना चाहे या बॉलीवुड वगैरह में जाना चाहे, जिनके अंदर एक टीस सी रही कि हम इस दुनिया में पदार्पण करें, उनके लिए एक स्वप्न की तरह बनकर तो आया है।
1: बिल्कुल,
4: और स्वप्न जितने यथार्थ होते हैं उससे कहीं ज्यादा लुभावने होते हैं
1: जी।
4: तो रील्स नो डाउट कि हमारे जीवन में एक लुभावना बन करके आया जो धीरे धीरे अपने आकर्षण में हमें घेरता जा रहा है
1: जी। विकास जी ने एक बहुत ही अच्छा सर्वे हमारे साथ शेयर किया है कि हम कितना समय अनुमानन इस पे बिताते हैं।
4: देखिए, रील देखते समय ये अंदाजा बहुत मुश्किल से लगा पाना होता है कि कितना समय बिता रहे हैं।
1: कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बिता।
4: बिल्कुल, इतने एडिक्ट हो गए हैं कि आप खाना खा रहे हैं तो रील देख रहे हैं, आप चल रहे हैं तो रील देख रहे हैं, और कई लोगों को तो मैंने देखा कि अगर वे कोई बहुत जरूरी काम लिखने पढ़ने का कर रहे हैं तो बगल रील चल रहा है। ये जो प्रवृत्ति बनी इधर के दिनों में
1: जी,
4: ये काफी खतरनाक साबित हो रही है
1: जी। पूनम जी, हाँ, आप भी कुछ कहना चाहिए?
3: मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत आसान है शुरू करना
1: जी
3: किसी भी चीज को, लेकिन वो रुकना कहाँ है, कहाँ पर फुल स्टॉप उसका लगना है, ये हम भूल जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो हम समझे जो फ्री लोग हैं वो भरमार हैं कुछ
1: है।
3: कुछ इसमें अगर मैं पर्सनल अपने लिए भी बात करूँ, मैं गृहिणी हूँ इस समय, जब मैं अध्यापिका के पद पर थी तब से भी, अब मैं रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे मैंने एक सोच के साथ रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि मुझे बहुत क्रिएटिव काम करने हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि इस शिकंजे में मैं खुद ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हूँ। कई बार तो ऐसा सोचता है कि लिमिट है ही नहीं टाइम की, जैसे सर ने बताया कि आप एक पिक्चर स्क्रॉल करते हैं, एक रील स्क्रॉल की, तो वो कहाँ जाके थमेगी आपको पता ही नहीं है। वो एक अजीब सी खुशी देने लग जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जो जिंदगी में काम आप नहीं कर पाए हैं वो रील के माध्यम से आपको लगता है कि अरे ये तो बड़े आसान है, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और बहुत बार

0: होने लग जाता है कि आपका काम तो एक तरफ पड़ा हुआ है, आप घंटों, जब आप एकदम से घड़ी की तरफ देखते हो, माय गॉड अभी तो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से मैं फोन पे हूँ। तो मैं खुद ही अपने आप को इसमें से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं बच्चों के बारे में क्या ही कह सकती हूँ।
1: मैं एक बात जोड़ दूँ, एक जोक चलता है, लेकिन वो जोक जो है वो दरअसल एक सच्चाई बन चुका है। आपको किसी से कोई जरूरी बात करनी है तो फोन उठाते हैं
2: जी,
1: और रील्स की जैसा सर ने कहा कि एडिक्टिव नेचर है
2: जी,
1: कोई रील आई अट्रैक्टिव तो है ही, मनोरंजक तो है ही है,
2: बिल्कुल।
1: तो वो आपने एक देखी अच्छा लगा, कंटेंटमेंट मिली, दूसरी तीसरी, 1 घंटे बाद आपको याद नहीं रहता कि किस पर्पज के लिए आपने फोन उठाया
2: था, बिल्कुल।
1: और तब तक 1 घंटा हो जाता है, तब तक जब याद आता है ओहो 1 घंटा हो गया, चलो अब मैं कल करता हूँ।
2: अभी
3: एक रेल को हम बाजार के एक उपकरण के तौर पर भी ले सकते हैं
2: जी,
3: कि बाजार सजा हुआ है सामान, उसमें हर तरह के।
2: बिल्कुल,
3: एक हिंदी के बड़े अच्छे कवि रहे, उन्होंने कहा कि चूल्हे तक आ गया बाजार, अम्मा घर संभाल के रखना।
2: बहुत अच्छा।
3: तो बाजार जिस तरीके से लोगों की मानसिकता को कब्जा करता रहा है, तो रील बाजार के एक जबरदस्त उपकरण के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें वही आकर्षण है एक बात। दूसरी बात, जब कोई चीज आती है तो वो पूरी तरह से हमारे समाज में स्वतंत्र छोड़ दी जाती है कि इसको विकसित होने दीजिए। जब तक वो विकसित होती है तब तक बहुत से लोगों को बेघर कर चुकी होती है। स्वतंत्रता कोई भी हो वो तभी अच्छी लगती है जब बंधनों से आच्छादित हो। जरूरी है कि इसके लिए कुछ नियम बनाए जाए, कुछ व्यवस्थाएं क्रिएट की जाए। और नोट आउट की रील ने बहुत सी प्रतिभाओं को आगे लाया है।
2: आपने प्रतिभा की बात की है, हमने शुरुआत में ही इसका जो आकर्षण है उस पर चर्चा की है, और पूनम कालिया जी ने ये भी कहा है कि इसके कुछ कुछ जो दुष्प्रभाव हैं उसकी भी उन्होंने कुछ बात छेड़ी। इससे पहले कि हम इसके दुष्प्रभाव की बात करें, लेकिन ये बात करनी बहुत जरूरी है कि इसका सार्थक उपयोग भी किया जा रहा है और अच्छा ज्ञान भी दिया जा रहा है, जागरूकता की बात की जा रही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्होंने ये साबित किया है कि रेल्स जो है वो गागर में सागर भरने जैसा माध्यम भी है। यानी कम समय में आप कितने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकते हैं, ये भी एक
3: थोड़ा सा और अगर क्रिएटिव टच दिया जाए ना
2: जी।
3: जैसे मैं अगर लिटरेचर की बात करूं तो बहुत सारे साहित्य ऐसे हैं, पिछले दिनों गुनाहों के देवता को खंडों खंडों में रील के रूप में प्रस्तुत किया गया। आशुतोष राणा जैसे अच्छे कलाकार जिन्होंने रामायण और रसमृति वगैरह का पाठ करके पॉडकास्ट के जरिए और उस पॉडकास्ट के चर्चा को रील में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया है।
2: अच्छा।
3: तो नो डाउट कि ये चीजें अच्छा, इन चीजों का अनुसरण अगर युवा करता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन युवा, क्योंकि एकदम से जो युवा हैं, जो अभी अभी तरुणाई की अवस्था को पार कर रहे हैं, विवेक अक्सर तब जागृत होता है जब व्यक्ति का यौवन चला जाता है। तो इस स्थिति में जो चयन का विवेक होता है वो शून्यता की तरफ होता है। तो शून्यता अक्सर कई बाहरी चीजों को भरने लगती है। इधर जो नग्नता परोसे गए रील के माध्यम से, जो ट्रेंड, वो जो स्टंट वगैरह लगाने की जो प्रक्रिया रही, ये सब नो डाउट कि युवाओं की मानसिकता को प्रभावित तो किए हैं।
2: बहुत अच्छी उदाहरण दी है आपने कि कैसे वो छोटे छोटे रील्स में बहुत अच्छे एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं।
0: मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर ये फिल्टर लगेगा कहाँ से, ये फिल्टर कहाँ से लगेगा। ना तो ये घर में लग रहा है, पेरेंट्स भी इसे, मैं यहाँ तक भी देखने को आई, इवन एंड डॉक्टर्स तक बता रहे हैं कि बच्चों को इसका एडिक्शन इतना हो चुका है, इसकी लत 1 साल के बच्चे को भी लग सकती है, इसकी 20 साल को भी लग सकती है, और इसकी 80 साल के बूढ़े को भी लग सकती है। ये एक लत की तरह है, है ना। ये हमारा डिपोमिन जो है एकदम से उसके मतलब निकल कर बाहर आता है कि हमें खुशी दे रहा है बस,
2: या कह ले कि डोपामिन का एकमात्र जरिया हम समझने लगे
0: जी,
2: हैं।
0: जी।
2: विकासी, आप मीडिया में हैं, समाचार पत्र में हैं, आज मीडिया चैनल्स की बात करें तो उन्होंने भी रील्स या कह लो कि शॉर्ट वीडियोस का तरीका बहुत अपनाया।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, मीडिया में आपको पता है कि जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आए
2: जी,
1: उसी पे फोकस किया जाता है,
0: दिखता है सो बिकता है,
1: बिल्कुल सही है। और रील जैसा सर ने बताया, मैम ने बताया कि आपको 30 सेकंड से 1 मिनट में, जैसे इन्होंने आशुतोष जी का जिक्र किया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम बता देती है
0: जी।
1: तो वो वही उसकी एडिक्टिव नेचर है, और उनको बनाया भी इसी पर्पज से जाता है कि आपको अपनी बात 30 सेकंड या 1 मिनट में कंप्लीट कर देनी है और पूरा एंटरटेनमेंट भी हो जाए
2: जी।
1: तो इसलिए मीडिया का भी एक पार्ट रील्स हो गया है। हम लोग जैसे जिस संस्थान में मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग सुबह और शाम को रील्स के माध्यम से, आज सुबह मान लीजिए 8 बजे से लेकर शाम तक क्या होने वाला

0: बड़े घटनाक्रम और शाम को आज दिन भर में क्या हुआ, तो हम एक मिनट दो मिनट की रील में आपको पूरा कॉन्सेप्ट रीडर्स को दे देते
1: हैं। मतलब कि व्यावसायिक पक्ष भी एक बहुत भारी है।
0: जी, ये दोनों चीजें जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा
1: जी।
0: ये चाकू की तरह आप सब्जी भी काट सकती हैं और उंगली भी कट सकती है।
2: मुझे भी ऐसा ज्ञात होता है कि हमारा फोकस सबसे ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो लत उन्हें लगा दी गई है साइंस में, अब इस बात को साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि ये ड्रग एडिक्शन की तरह है। तो बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो हमारे लिए खतरनाक है। हम समझते हैं कि वो सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो गया, लेकिन जब इसका कंपैरिजन स्क्रॉलिंग का जो कंपैरिजन है वो ड्रग एडिक्शन से किया जा रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा युवा समाज अब कहाँ जा रहा है।
1: जी अनिल जी, आप क्योंकि हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं और आपने एक बहुत अच्छी उदाहरण भी दी थी कि कैसे रील्स में छोटे छोटे एपिसोड बनाकर हम कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस शेयर करते हैं, आप इसका बहुत ही सकारात्मक पहलू बता रहे थे।
3: तो देखिए, दो चीजें हैं कि नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों एक सिक्के के दो पहलू। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो अंधा युग में एक लाइन है, कहता है कि आस्था तुम लेते हो तो अनास्था लेगा कौन। अगर मेरा समर्पण तुम लेते हो तो असमर्पण के भाव भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। रील में मैंने कई बार कई लोगों को अच्छा कार्य करते हुए देखा
1: है। जी।
3: मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कई विश्वविद्यालय इस पर पढ़ाई करवा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज अपने सिलेबस में इसको शामिल कर रही हैं। क्योंकि ये जमाना 2020 का है, टेस्ट और वनडे का नहीं है। ध्यान दीजिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे पास अब वह समय नहीं रहा 15 मिनट का समाचार सुने, समाचारों में भी बुलेटिन की प्रथा है। तो ये जो साहित्य, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रकाशन संस्थानों ने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। अगर व्यवसायिक, उन्होंने अपनी किताबों की बिक्री रील्स के माध्यम से की
1: जी।
3: एक्सपर्ट उन्होंने सिर्फ रील्स के नियुक्त किए। आपको बताऊं, भारत में तेजी से नौकरी के क्षेत्र में भी विकास आया है
1: जी।
3: इस रील के माध्यम ने लोगों को अच्छे रोजगार भी दिए हैं। ये लाख रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की नौकरी लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला, उन युवाओं को रोजगार मिला जो एकदम ग्रामीण जीवन से शुरू हुए थे। उनको, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था महानगरीय जीवन भी वो जी सकेंगे, लेकिन उन्हें टप से उठा लिया गया और ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो अपनी प्रतिभाएं निखार रहे हैं कि देखकर आश्चर्य होता है, अगर रील की दुनिया ना होती तो ये कहां होते।
1: और इसका आपने बहुत सकारात्मक पक्ष हमें बताया, लेकिन हम ना चाहते हुए फिर इसके दुष्प्रभाव की ओर आते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जो रील्स बनाते हुए लोग अपनी जान गवा देते हैं, उनमें से भारत पूरे विश्व में सबसे आगे है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। यानी कि हम रील्स बनाने के चक्कर में कोई भी खतरा मोल ले रहे हैं।
0: जी जी,
1: बिल्कुल।
3: धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी
1: जी।
3: जैसे पहले शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, उसमें शक्तिमान बनने के चक्कर में लोग घरों से कूद जाते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ विकसित होती जाएगी, जैसे जैसे लोग फालतू की चीजों से अच्छे कार्यों की तरफ डाइवर्ट होते जाते हैं।
2: देखने में तो सर ये परिपक्वता आ सकती है, लेकिन जो रील्स बना रहे हैं जिनका सिर्फ यही मोटिव है कि कुछ भी परोस देना है, उनका सामाजिक दायित्व कोई है ही नहीं, तो क्या हम अपने सामाजिक दायित्व से पीछा छुड़वा सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम अगर समाज में रहते हैं और हमें, शायद अध्यापिका होने के नाते मेरा सबसे ज्यादा फोकस मेरे बच्चों पे है कि इसमें उनका जो लॉस हो रहा है, बच्चों में समझ तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये साइंस प्रूव कर रहा है कि लॉन्ग टाइम मेमोरी बिल्कुल हमारी खत्म हो रही है। अगर बच्चा 20 रील भी देख रहा है तो उसको याद नहीं है कि उसने पिछले 20 मिनट में 20 रील में क्या देखा।
1: एकाग्रता का जो समय है वो कम हुआ है।
2: जी
1: जी,
0: इस पर आपकी चिंता में इनकी जायज है और इस चिंता को पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है।
2: जी,
0: यूरोप के 27 कंट्री, इवन मुस्लिम बहुल जो गल्फ के कंट्रीज हैं, यूएई, उन कंट्रीज में भी अब इस पे टीनेजर्स पे, 16 साल से कम के बच्चों पे सोशल मीडिया देखने पे कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चाइना में भी शुरुआत हो चुकी है, इंग्लैंड में अगले साल से शुरुआत हो जाएगी। इवन इन इंडिया, भारत में हमारे दो राज्यों ने, आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने ऐसी रेगुलेशन की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे पहल की है और हमारे देश में थोड़ी चीजें स्लो होती हैं, हमें पता है
2: जी।
0: लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो मॉडल अपनाया है उसकी तारीफ की है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी है।
0: जी हाँ, और ये रील्स का जैसे दुष्प्रभाव की बात करें तो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हमें कुछ समय बाद रील्स को आप इस्तेमाल नहीं करते, रील्स आपका इस्तेमाल करने लगती हैं। तो जो आप एक घंटा, जो कि एक मिनिमम एवरेज आ गया हुआ सामने,

0: नहीं, और मैक्सिमम जो तीन घंटे चार घंटे लगा रहे हैं तो वही आप क्रिएटिव वर्क से दूर भी हो रहे हैं आपको, क्योंकि तुरंत आनंद मिलता है तो इसलिए बुक्स पढ़ना बोझिल लगता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: डीप स्टडी करना बोझिल लगता है
1: और
0: वो हमारा नुकसान है।
1: मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो खास करके बच्चों का हुआ है वो कोरोना पीरियड में हुआ है। पहले पेरेंट्स फ़ोन देते नहीं थे, स्ट्रिक्टनेस थी बच्चों के लिए कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना, फिर वो कंपल्सरी हो गया फोन देना, और एक बार जो चीज़ बच्चों के हाथ में आ गई उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है।
2: मैं यहाँ आपको रोकते हुए एक और बात करना चाहूँगी कि हम अक्सर बच्चों की बात करते हैं या खास तौर पे जेन ज़ी की बात करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनके हाथों में भी मोबाइल है और वो भी इसके अडिक्ट हो चुके हैं।
0: मेरे नज़र में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूं काफी साल तक, तो अपना एक उदाहरण जो मेरा अनुभव है वो आपको बताना चाहता हूं। तो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हम लोग जाते थे रात को खाना खाली, वहाँ 24/7 की लाइफ है। तो एक स्टूडेंट मेरे वहाँ दोस्त बन गए, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते कि उनकी मदर भी रिटायर्ड थी, तो कहता मैंने मम्मा को कहा कि अकेलापन होता तो मैं आपको स्मार्टफोन ले देता हूँ, ये थोड़ी पुरानी बात है 4-5 साल पहले की। तो उन्होंने कहा कि मैंने टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ किया है, मेरे बस का नहीं है तो मुझे ना लेके दो। कह रहा मैंने जबरन उनको स्मार्टफोन लेके दिया। कह रहे विकास जी अब मैं हफ्ते बाद जब जाता हूँ वो हरियाणा में अम्बाला के पास तो मम्मा के पास टाइम ही नहीं है मेरे पास बात करने का।
1: मैं शायद इसको एक सकारात्मक रूप में लेती हूँ, क्योंकि आजकल विघटन हो रहा है परिवारों में, बच्चे जो हैं वो उतना समय पेरेंट्स को नहीं दे पा रहे, तो जो अकेले बैठ के वो सोचते रहते थे उससे उनकी हेल्थ पे प्रभाव,
0: बुजुर्गों के अकेलेपन में कुछ हद तक मदद
1: हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मदर का खुद ऐसे था, तो हमने उनको जो फनी वीडियोस होते थे, आप उन जिस तरह से बच्चे को एजुकेट करना पड़ता है कि उनको क्या देखना, इसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी, तो उनको मैं फनी वीडियोस जो निकाल के, चाहे जानवरों के होते थे, इस तरह के वीडियोस उनको निकाल कर, आपको पता है स्क्रॉल करने पे एक तरह का वीडियो बार बार आने लग जाते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था।
2: आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: देखिए बुजुर्गों को, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा हों या बच्चे हों, सबको अपनी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन तो करना होगा, क्योंकि एक तरीके की कल्चर जो बिल्डअप होती है उसमें सबका योग होता है। बुजुर्ग बच्चों को कोसे, बच्चे बुजुर्ग कोसे, या युवा दोनों को कोसे, इस प्रवृत्ति से हमें बाज आनी चाहिए, इसलिए कि एक व्यवस्था के तहत सभी कार्य करते हैं। अगर बुजुर्ग कुछ अच्छा उदाहरण पेश करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा अपने ट्रैक से बाहर जाए। अच्छा उदाहरण पेश, कजरी गाया जा सकते हैं, लोकगीत गाया जा सकते हैं, रील बनाकर उनको ट्रेंड में लाया जा सकता है, यूट्यूब चल रहे हैं, तमाम माध्यम ब्लॉग्स हैं, इन चीजों के माध्यम से अगर आप बच्चों को प्रेरित करते हैं ला करके, तो वो अगर इस साइड डाइवर्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता
2: डिजिटल एक साक्षरता जो है उसकी कमी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, वो होनी बहुत जरूरी है। एक जो बात रील्स में, हम जो सब रील्स बनाते हैं अपने अपने चैनल्स हैं, वो लाइक्स और व्यूज का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और हम बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्यटन स्थलों पर बहुत भीड़ है, धार्मिक स्थलों पर पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा भीड़ है, यानी कि कोई जा रहा है तो हमें भी जाना है, और उस चक्कर में बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
3: अंधानुकरण हर जगह है, लेकिन बात वही है कि एक शेर मुझे याद आता है, उसकी लाइनें कि शौके दीदार है गर तो नजर पैदा कर। अगर आपको कुछ अच्छी चीजें देखनी है तो आंखें खोलिए, उधार के आंख से अच्छाई नहीं दिखती।
2: बिल्कुल,
3: अपनी आंखें खोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि वैश्वीकरण के इस दौर में चीजों पर एकाएक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकते, एकाएक उनको रोका नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। फिर वही कि बाजार हर तरह के उपकरण दिया है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खरीदना क्या चाहते हैं। आप पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, आप पिस्तौल भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप पुस्तकों की तरफ ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपकी जरूरत है, वो आपका स्वप्न है ना, उससे आपके जीवन की गति निर्धारित होती है। तो तय हमें आपको ही करना है कि रील, देखो रील बनेगी तो इसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसको प्रोफेशनल कल्चर में भी शामिल किया गया है और उसको प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, व्यावसायिक रूप भी ले लिया है। हमने इस बात पे भी चर्चा की कि इस पर रोजगार भी अच्छे निकल करके आए हैं, कई घरों की रोजी रोटी इस रील के माध्यम से चल रही है, तो ये एक बैग तो नहीं रुकेगी, लेकिन इसको ले किधर जाना है, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बने, कुछ नियम बने और कुछ काम हम सब भी करें।
1: हाँ, बिल्कुल,
3: क्योंकि दोषारोपण अंततः किसी चीज का सिद्धांत
1: नहीं। सर, मैं इस बात से भी बात करना चाहूंगी इस पे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स, आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी जहाँ पे दो दो चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात साल के बच्चे हैं जिनको सिर्फ प्रोफेशन के लिए या वो जो अर्निंग आ रही है उसके लिए बच्चों को यूज किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? वहां पर बच्चों की गलती

0: नहीं है, वहां पर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल
1: इस
0: है।
1: पर मैं कहता हूं
0: जी
1: कि अति सर्वत्र वर्जिते, जो
0: जी
1: भी एवरीथिंग विच इज इन एक्सेस इज
0: बिल्कुल
1: बैड।
0: बिल्कुल
1: तो ये बात आपकी चिंता सही है, ये पेरेंट्स का रोल तो मानना पड़ेगा, उनकी भूमिका माननी पड़ी।
0: जी
1: पेरेंट्स, अब बच्चा रो रहा है
0: जी
1: तो आपने तुरंत से बड़ा सा स्क्रीन वाला स्मार्टफोन खोला, उसमें रील्स लगाई दिखा दी, उसमें
0: जी बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों की आंखों पे
0: आंखों
1: असर
0: पे
1: पड़ता है। और जो एडल्ट देर रात तक,
0: जी
1: साइंटिस्ट कहते हैं कि देर रात तक ब्लू स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, उससे
0: नींद की
1: आपकी नींद
0: समस्या भी
1: प्रभावित
0: आती
1: होती
0: है
1: है। तो
0: उससे।
1: अगर आपकी नींद प्रभावित हो रही है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी
0: बिल्कुल
1: हेल्थ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने सेहत की बात की ही है,
1: जी
0: एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसका कि

0: हेल्थ पे, बच्चों की आंखों पे
1: आंखों पे।
0: असर पड़ता है। और जो एडल्ट देर रात तक,
1: जी
0: साइंटिस्ट कहते हैं कि देर रात तक ब्लू स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, उससे
1: नींद की
0: आपकी नींद
1: समस्या भी
0: प्रभावित
1: आती
0: होती
1: है
0: है। तो
1: उससे।
0: अगर आपकी नींद प्रभावित हो रही है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी
1: बिल्कुल
0: हेल्थ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपने सेहत की बात की ही है,
0: जी
1: एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसका कि रील्स देख से देखते हमारा जो एकाग्रता का समय है कम हुआ है। हम
2: जी
1: कुछ सेकंड्स की रील भी पूरी नहीं देख पाते,
2: बिल्कुल
0: जी
1: जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, तो इससे एंग्जाइटी का जो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि सभी में एंग्जाइटी
0: जी
1: बढ़ रही है।
0: देखिए, अगर आपको 30 सेकंड, 1 मिनट भी ज्यादा लग रहा है,
1: जी
0: तब आप आधे घंटे की बुक, 1 घंटे की बुक कैसे
1: कैसे
0: पढ़ेंगे?
1: पढ़ेंगे,
0: तो डीप
1: बिल्कुल
0: स्टडी जो है वो कैसे होगी?
2: यही नहीं हो पा रही
0: और
2: सर।
0: एल्गोरिदम ऐसा है, आप जानते हैं एल्गोरिदम के बारे में। अगर आप मान लीजिए आपने किसी स्पोर्ट्स की रील्स पे क्लिक किया, लाइक
1: जी
0: किया,
1: जी
0: तो अगले आधे घंटे में 25 रील्स तो आपको स्पोर्ट्स के मिलने वाले
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल। गलती से आपने कोई ऐसी रील देख ली जो कि
2: जी
1: आपके लिए ठीक नहीं
0: ठीक
1: है,
0: नहीं
1: तो
0: है
1: आपको बार बार वही रील्स दिखाई
0: वही।
1: देगी।
0: तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये रील्स जो हैं बड़ी आसानी से नहीं बनती हैं,
1: जी
0: इस पर काफी दिमाग लगता है
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किस
2: आईटी
0: तरह से
2: सेल लगे
0: आपके
2: होंगे
0: दिमाग
2: बिल्कुल।
0: को एक तरह से कैप्चर या हाईजैक कर लिया जाए। 30 सेकंड के बाद भी, 1 मिनट के बाद भी आपको जब खुशी मिलती है, आपको जो आनंद मिलता है, तब आपकी उंगली दूसरी, तीसरी, चौथी, आप कहीं रुकते नहीं। रील्स का संसार खत्म नहीं होगा, आपका समय खत्म हो जाएगा।
2: हाँ सर, वैसे भी जिस एज में हम लोग हैं, अगर यंगस्टर की बात नहीं भी करें, तो जब हमारी मेमोरेबल मोमेंट्स जो होती हैं, आप देखिए आपको बचपन के वही दिन याद आते हैं,
0: जी
2: आप कैसे बाहर भाग रहे थे, आपने रस्साकशी की है, आपने जो स्पोर्ट्स बाहर खेले हैं, आपको
0: जी
2: वही चेरिश करते हैं।
0: जी
2: तो रील्स तो हमें चेरिश कर ही नहीं पाती, हम तो भूल ही जाते हैं कि हमने देखा क्या है।
1: इस बात में पूनम जी ने एक जवाब भी दे दिया है कि हम जो खेल कूद है या फिर किताबें पढ़ना या और भी कोई गतिविधियां हैं उनमें शामिल होना ज़रूरी है। सो एक तरह से आपने इसका एक सलूशन भी बताया है।
2: जी
1: अब क्योंकि इस परिचर्चा का जो समापन का समय है पता ही नहीं चला कब हो रहा है,
0: जी
1: तो आखिर में आपसे सभी से पूछना चाहेंगे कि इसका जो समाधान है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है जो लोगों को बहुत ही अच्छी दिशा दे रहा है, और दूसरी तरफ भ्रमित करने वाला जो है कंटेंट वो भी है, तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए।
3: विशेष तौर पर अगर मैं एक दो वाक्य में कहूँ तो ये कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया
1: जी
3: जाए और
1: जी
3: सही कंटेंट को न सिर्फ लाया जाए बल्कि बढ़ावा भी दिया जाए। ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है,
1: लेकिन
3: उनको
1: एक
3: शेयर
1: बहुत
3: भी
1: ही एक
3: किया
1: दुखद
3: जाए।
1: पहलू है कि अगर हम देखें कि वो वीडियोस जिनमें कुछ अच्छा कंटेंट है वो लोग इतनी
2: जी
1: नहीं देखते, बल उसके उल्ट जिनमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमारे लिए सही नहीं है उनको बहुत व्यूज मिले होते हैं।
0: नहीं, इस पे ऐसा है कि ये मेरा अनुभव भी है
1: जी
0: कि मान लीजिए कुछ रील्स आपको डिस्टर्बिंग है, आपको 1 या 2 दिन में ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ रील्स आपको डिस्टर्बिंग लग रही हैं, आपकी पसंद की नहीं है, तो आप उसे ना देखें, आप उसमें कमेंट अपना दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं,
1: रिपोर्ट कर सकते
0: रिपोर्ट
1: हैं।
0: कर सकते हैं, फीडबैक दे
1: जी
0: सकते हैं, कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू माई इंटरेस्ट, ऐसा कुछ लिख सक आप
3: या
0: फीडबैक दे सकते हैं।
3: नॉट इंटरेस्टेड,
0: तो
3: नॉट
0: आप
3: रेलिवेंट।
0: यकीन मानिए कि 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपको वही रील्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: एल्गोरिदम वर्क करता है
1: जी
0: जो आपकी पसंद की हैं, जो आपके
1: बिल्कुल
0: टेस्ट की हैं।
1: जी
0: तो एक तो इसका ये पहलू मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। दूसरा, पेरेंट्स को, बच्चों को मान लीजिए थोड़ा परेशान कर रहे हैं तो मोबाइल उनके हाथ में थमाने से
1: जी
0: बचना चाहिए। तो अगर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मानसून आ रहा है, थोड़े
1: जी
0: दिन में खूब झमाझम बारिश होगी, तो एक तो आपके पास हल ये है कि आप बाहर जाएं, मानसून में भीगें, खूब मस्ती करें,
1: प्रकृति का
0: आनंद
1: आनंद
0: करें,
1: लें।
0: प्रकृति को महसूस करें, उसका आनंद
1: जी
0: लें।
1: जी
0: और दूसरा ये भी हो सकता है आप रील्स में बारिश को देखें। तो अब चॉइस इज योर्स,
1: बहुत अच्छी
0: और
1: आपने ये
0: सबसे अच्छा
1: उदाहरण
0: यही
1: दिया।
0: रहेगा कि आप प्रकृति के करीब जाएं, उसे महसूस करें, मानसून में खूब सारे पौधे लगाएं,
1: जी
0: ग्रीनरी बढ़ाएं,
2: बिल्कुल, आप
0: ना कि रील्स में 3 घंटे देखने के बाद अपना समय वेस्ट कर दें।
1: परिवारों का जो दायित्व आप बात कर
2: जी
1: रही थी।
2: बिल्कुल, मैं एक अध्यापिका के तौर पे बता रही हूँ, जैसे सर ने कहा कि मानसून आ रहा है, तो मेरी क्लास में ऐसा होता था कि जिस दिन बारिश का मौसम होता था, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में मैं रही हूँ, तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था, तो मैं सभी बच्चों को कहती थी किश्तियाँ बनाओ, और वो सभी बच्चे कई बार मुझे इस बात के लिए डांट भी पड़ती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं वो शायद इस चीज़ को
0: उनकी
2: पसंद नहीं
0: अपनी
2: करते
0: सोच
2: थे,
0: है।
2: तो मैं सारी क्लास को बाहर लेके जाती थी और वो किश्तियाँ छोड़ने का एक कंपटीशन करवाती थी। अब धीरे धीरे चाहे सरकारी स्कूल ले लीजिए, स्मार्ट स्कूल बन गए, वहाँ पर वही कल्चर आ गया है कि आप उससे पढ़ाइए, स्मार्टफोन है उनके साथ, तो वो भीगने का मज़ा तो सर बारिश में आएगा,
0: नहीं,
2: देखने से
0: बड़ा
2: नहीं आएगा।
1: अनिल जी
3: सकारात्मक
1: आपकी तरफ से भी
3: वो
1: कुछ
3: कागज की
1: कहना चाहते
3: कश्ती
2: जी।
3: बारिश।

0: बारिश का पानी, वो
1: पानी
0: गाने ही रह जाएंगे सर जो
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऐसे टीचर सभी टीचर करें तो
3: देखिए टीचर्स तो होते ही प्रायोगिक हैं और माता पिता को भी प्रायोगिक होना पड़ेगा। प्रयोग करना हमारा धर्म है, रील भी एक तरीके का प्रयोग ही है। अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा, खराब करोगे तो खराब निकलेगा। बस बात वही है कि आपको ही तय करना पड़ेगा कि आप इस बाजार से लेना क्या चाहते हैं।
4: जी, तकनीक हमेशा एक साधन होती है, साध्य नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम डिजिटल दुनिया का हिस्सा तो बने लेकिन जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल भी करें, विवेक के साथ इस्तेमाल करें, तब ही ये समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है। इस परिचर्चा में आपने भाग लिया विकास जी, अनिल कुमार पांडे जी और पूनम कालिया जी, और बहुत अच्छी बातें आपने साझा की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया
2: आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: हुण तुसी सुन रहे सी हिंदी वार्ता परिचर्चा, रील कल्चर अभिव्यक्तियां आकर्षण। इस विच प्रतिभागी सन विकास शर्मा, पूनम कालिया अते डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। आ हुण समात फरमाइए एक असल।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सरगम दे विच तुसी गीत सुन रहे हो, गल्लां बातां असीं कर रहे हैं। दोस्तों जिवें सत सुर मिल के एक सुंदर राग, सोहना राग बनाउंदे हन, उसे तरह प्यार, सत्कार, भरोसा ते इंसानियत मिल के जिंदगी नूं खूबसूरत बना दिंदे हन। इस लई अपनी जिंदगी विच वी सुरां वर्गा संतुलन बना के रखो, मुस्कुराते रहो अते खुशियां वंडते रहो, क्योंकि जिंदगी भी एक सरगम वांगू हुंदी है। कई बारी सुर जिहड़े हुंदे आ गमां दे हुंदे ने, कई बारी सुर खुशियां दे हुंदे ने, सो इन्हां नूं मिला के ही जिंदगी बनदी है। घबराउण दी कोई लोड़ नहीं, मुस्कुराते रहो, हसदे रहो। इस दे नाल ही इस प्रोग्राम दा अगला गीत पेश है, आनंद माणो।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को

0: जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहुत ही पुराना और बहुत ही मकबूल गीत असी सुनिया सुरेश वाडकर ते रंजीत कौर दी आवाज़ां दे विच। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, ते हुण असी गलबात करांगे अपने अगले कॉलर दे नाल। हेलो,
1: हेलो सर जी, सत श्रीकाल जी।
0: हाँ जी, कौन बोले ने, किहड़ी जगह तों?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप बात करूंगा, आपका नियमित श्रोता।
0: अरे वाह मुकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पंजाबी गीत सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको समझ आते हैं, बट आप पंजाबी बोल नहीं पाते, मैं ठीक कह रहा हूँ?
1: जी सर, बोल नहीं सकता मगर मैं समझता सर।
0: अरे वाह, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अपने बारे कुछ बताइए मुकेश जी, क्या काम करते हैं आप?
1: सर हम खेती बाड़ी भी करते हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी चलाता हूँ सर।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है।
1: जी सर, धान की फसल हमारी लग चुकी है सर।
0: अरे वाह, बहुत खुशी हुई। तो आपको दिन में सुनने का मौका मिलता है हमारे प्रोग्राम में, सिर्फ रात को सुन पाते हैं?
1: जी सर, अब मेरी गाड़ी में FM लगा हुआ है, मैं
0: जी
1: कनेक्ट करके चलाता हूँ आपका रेडियो।
0: अच्छा, तो जो आपकी ईवी गाड़ी है उसमें आप लोकल चल पाते हैं, दूर दूर जा पाते हैं?
1: ना ज्यादा दूर नहीं, बस सर 20 किलोमीटर की आते।
0: अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आज आप
1: बैटरी
0: कौन
1: वाली
0: सा
1: अच्छा है ना सर,
0: है जी?
1: बैटरी वाली गाड़ी है ना हमारी।
0: अच्छा, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है?
1: जी, जब भी 30 किलोमीटर बाद आते।
0: चलो चलो, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर हरभजन मान का कोई भी गीत सुना दीजिए सर।
0: ठीक है जी, आपके पसंद का गीत ज़रूर प्ले करेंगे मुकेश जी। थोड़ा वेट कीजिए, हम पहले व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लेते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हुण असीं गलबात कर रहे सी मुकेश जी दे नाल, जिहड़े कि खेतीबाड़ी भी करदे ने और नाल नाल इलैक्ट्रिक गड्डी चलांदे ने, और उहदे विच साडे पूरे प्रोग्राम रैगूलरली सुनते हैं। बहुत चंगा लगे इन्होंने गलबात करके जी। अगला व्हाट्सएप मैसेज जो असीं प्रोग्राम शामिल करन जा रहे हैं जी, सानू मैसगेट नाभा तो मिले है। भेज रहे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमंत, एक दिन कोई भी सानू पंजाबी गीत सुनवा दिओ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन दे लई। और सैक्टर 67 मोहाली तो चंडीगढ़ तो सानू बड़ा ही प्यारा मैसेज भेज रहे हैं TD मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जैवी, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो सानू मैसेज भेज रहे हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, ते नाल इन्हां दे बिट्टा बजाज। इन्हां सब नू असीं JN आखदे हां जी, मैसेज भेजन लई बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, एक नाराजगी का मैसेज भी आ गया जी, बहुत बहुत स्वागत है इन्हां दा भी। ਇਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੂ, ਲੱਕੀ, ਸੋਨੂੰ, ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 94655-36077 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਗਲ ਗੀਤ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੋ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦੀ ਔਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? किस जगह तो?
1: मेरा कॉलोनी फाजिलका से चरमा सागर बोल रहे हैं सर
0: फाजिलका तो तर्मा सागर जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल ने?
1: जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया। सर जी आपका
0: हो सुनाओ, की
1: प्रोग्राम
0: कर रहे से
1: इंजॉय
0: इस
1: कर रहे
0: वेले?
1: हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम।
0: शुक्रिया जी। की कर रहे से मैं कैसे बोले?
1: तड़ा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं सर जी।
0: वेरी गुड वेरी गुड। ते आज
1: गर्मी
0: किड़ा की सन
1: गर्मी से ना भी
0: सुनवाओगे?
1: तड़ा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं,
0: आज
1: गर्मी में भी इंजॉय कर रहे हैं सर जी।
0: आज किड़ा गीत सुन सुनवाओगे प्रोग्राम सुगात विच?
1: मोहम्मद रफी जी आज सुना रहे सर जी,
0: मोहम्मद
1: कवि
0: रफी
1: शर्मा
0: का
1: जी
0: एक गीत है जी मेरे को।
1: लिखे हैं चन्न परदेसी फिल्म का जी,
0: हाँ, नारुस हीरे मेरी है,
1: नारुस हीरे मेरी।
0: मैं रंजन तेरा।
1: हाँ जी
0: यह बहुत पुरानी फिल्म है जी, ते मोहम्मद रफी साहब की बड़ी वधिया पेशकश है। तुम्हें गीत पसंद है जी ये वाला?
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत रफी साहब जी तो बहुत ज्यादा पसंद है।
0: ते इस गीत के लेखक कौन है पता है?
1: हाँ जी शर्मा जी, पवन शर्मा जी लिखा है,
0: हाँ जी, जुगराओं वाले।
1: दोस्त जिगराओं वाला।
0: चलो चलो, तो पिक्चर भी देखी होनी फिर अवली।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बारी
0: हाँ चलो,
1: राजबब्बर से शर्मा से ओमपुरी कुलभूषण खरबंदा।
0: ठीक है जी। तर्मा सागर जी,
1: हाँ
0: कॉल
1: जी
0: करने बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी पसंद का
1: हाँ
0: गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ तक तो पहुँच रहा जी, धन्यवाद थोड़ा।

अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू भेज रहे ने जी, तालुका पंडरपुर महाराष्ट्र तो, जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान ते सलमा। ये कहते हैं कोई भी पंजाबी गीत सानू सुनवा दिओ। मैसेज भेजने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मालवा रेडियो श्रोता संघ पिंड हिंगड़ी रतलाम एमपी तो सानू मैसेज भेज रहे ने जगदीश ठाकड़, रंजू बाई, युवराज ते शिवांगी धाकड़। ऐसा सुनना चाहते ने बन्नी दा गाया हुआ कोई भी पंजाबी गीत। आओ जी सुनते हैं इन्हां दी पसंद दा पंजाबी गीत।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी आएगी।

आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ। साहेब श्री गुरु नानक देव जी राग आसा विच उचारे अपने शब्द विच, प्रभु दा नाम जपद्या ही खुद नू आत्मिक जीवन अवस्था विच महसूस करदे हन। पर प्रभु दा नाम जपना सुखैन कारज नहीं है। जिसनू सच्चे नाम दी भुख लगनी है, उही जीव नाम रूपी भोजन ग्रहण करके आत्मिक सुख प्राप्त कर लैंदा है। इसे तरह राग आसा विच उचारित एक होर शब्द विच आप जी फरमाउंदे ने कि गफलत दी नींद विच सुत्ता मूड मन उस प्रभु नू चेते नहीं करदा, प्रभु नू विसार के उसदे गुण भी नष्ट हो जांदे हन। पर उस नू चेते कीत्या इस भवसागर नू पार कीता जा सकता है। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1196 ते सुभायमान शब्द विच भगत नामदेव जी प्रभु चरणा विच जोदड़ी करदे ने कि हे मेरे बीठल पिता, हे गोविंद, हे जगत दे स्वामी, मेरी बेड़ी संसारिक चखड़ां विच तूफाना विच घिर गई है ते मैं खुद इस नू चप्पू लाउण जोगा नहीं हाँ। इसलिए हे पिता दया करो, मैनू ए संसार समुंदर चों पार लगा दिओ। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। इस शब्द का गायन किया भाई निरंजन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला। इस शब्द का गायन किया सिपाही निरंजन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। राग गौड़ी पूर्बी विच उचारित शब्द विच पंचम दातार फरमाउंदे ने कि संसार दे लोग विकारां विच गलतान हो के संसयां विच ग्रस्त हन, पर प्रभु प्यारे महापुरश गुरमुख जन इस पवसागर नू सहजे ही पार कर लैंदे ने। सुनदे हां डॉक्टर मेहरप्रीत सिंह होरां पासों वार्ता, एह संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी।
1: गुरबाणी दा ए पवित्र फरमान बाणी दे बोहित पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे मुखारबिंद विच्चों उचारित है ते सोहिला साहब दी बाणी विच राग गौड़ी पूर्बी विच अंग 13 ते सुभायमान है। गुरु साहिब इस पंक्ति विच मनुखी जीव नूं संबोधन करदे होए फरमांदे हन कि ये जगत विकारां नाल भरपूर है ते संसारी जीव इन्हां विकारां दे तोखलियां विच डुब रहे हन, पर इन्हां विच्चों तरदा उही है जो परमात्मा नाल जान पछाण पा लैंदा है। मनुखा जीवन इस संसार ते सर्वश्रेष्ठ जीवन है ते इह संसार मनुख दी करम भूमि भी है। संसार दी बनावट विच पदार्थवाद दा वड्डा योगदान है, जां इवें कह लईए कि संसार दी चाल ही पदार्थवाद है। इस विच ग्रसिया मनुख विकारां विच लिपट जांदा है, मनुख नूं पता ही नहीं चलदा कदों इस उलझन विच उसदा जीवन खत्म हो जांदा है। मनुख इस फरेबी ताने बाणे विच उलझ के अपने जीवन दा मनोरथ भुल जांदा है। पंचम पातशाह मनुखी जामे दे मनोरथ नूं समझांदे हन, पई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद बिलन की इह तेरी बरिया। गुरु अमरदास पातशाह फरमांदे हन, मन तूं जोत सरूप है अपना मूल पछाण। गुरु नानक देव जी राग आसा विच फरमांदे हन कि इह संसार एक घूमन केरी है ते गुरु दा शब्द ही मनुख दा आत्मक विकास करके उस नूं इस भवजल विच्चों पार लंघाउंदा है। इह संसार बिखवत अत भवजल गुर शब्दी हर पार लंघाई। अनेकां जीव जगत विच जन्म लैंदे हन ते चले जांदे हन, पर कुछ सुभागे मनुख ही प्रभु दे लड़ लग के इस संसार तों पार लंघ जांदे हन ते जम्मन मरण दे चक्कर तों छुट जांदे हन। गुरु रामदास पातशाह कृपा करदे होए फरमांदे हन, हे मेरे अनजाण मन, इस संसार दा मोह ही जन्म मरण दा कारण बनदा है। इस तों बचण लई परमात्मा दा नाम सिमरन करदा रह, हे हरी मेहर कर मैनू गुरु मिला दे, तद ही तेरे नाम विच लीनता हो सकती है। इह संसार सब आवन जाना मन मूरख चेत अजाना, हर जियो कृपा करो गुरु मिलो तां हर नाम समाना। भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि इह संसार दे बंधना तो मेरी तद ही खलासी हो सकती है जे मैं माया दे मोह विच ना फसा। माया दा मोह ही जन्म मरण विच पैण दा मूल है, इस नूं त्याग के ही प्रभु दा दीदार हो सकता है। इह संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का तह तज दर्शन पावो। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि सारा जगत सुपने वांग है, पता नहीं मनुख क्यों लोभ विच फसदा है, जो जमदा है वह नास भी हो जाता है। यह संसार सगल है सुपनो, देख कहाँ लो पावे, जो उपजै सो सगल बिनासे रह न कौ पावे। गुरु नानक पातशाह राग प्रभाती विच फरमाते हैं कि सारा जगत सिर्फ वकार ही सहेड़ रहा है ते इस दी दवाई सिर्फ तेरा नाम ही है। तेरे नाम तो

गुर तार तारण हारिया, दे पगत पूरन अविनाशी, हौ तुझका बलिहारिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी की इस रचना का गायन कर रहे सन बीबी कमलजीत कौर।

शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना विचारो, रथ न असव न गस सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कौ दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन सख, उलटत जात बिर की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरण, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। ब्रह्माद किसी संत मुनीश्वर, रसक रसक ठाकर गुण गावत, इंदर मुनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवर दानव, इक तिल ताको मर्म न पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल का सजावत, रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे

0: लौट गई स्वामी समरथ, नानक दा सदा बलहारी।
1: आपदी कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंदियो ना जात,

0: चले हर पंथ पग, नानक रोग दोख अगम हो, सिदे हर नाम खग।
1: उद्दम कर लागे बह पाती, बिचरह अनिक शास्त्र बह खटुआ, पसम लगाए तीरथ बह प्रमते, सूखम देह बंदे बह जटुआ, बिन हर भजन सग।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो।